0: 97.6
1: Shukla Gandaki FM 97.6 Shukla Gandaki Time Check
2: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो
3: नोटेटाङ जी मिठो जिङ्गु मातृभाषा सट्टाङ शुक्रबार बोहनी च्याउ बजे झिमी भाषा जगे नयाटा झिमी प्रयास आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी नगर समन्वय परिषद र शुक्ला गण्डकी एफएमयू सहकार्य न्यानी साथ पेटा अनुरुद्ध सुभया
4: सकेस्ता जोजलोपा जी ज्ञान नारायण शेषख मातृभाषा आवाजको आवश्यकता आजको आदिवासी जनजाति पहिचान जिन नुटा अब जिमुटो ठाउँ भ्याए ढ्याउ नपाए श्रृंखलाए छिपुङ सकेस्ला आपा आपा सुभाए ठोज्याज आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद शुक्ला गण्डकी नपाङ सहकार्य याली डकाउख ठो कार्यक्रम सकने शुक्रबार बोनी च्याउ बजे शुक्ला गण्डकी एफएम गुनेको दशमलव खुब मेगा हर्ज प्रसारण ज्याचुन्न रेडियो ध्वनि तरंग नपाङ शुक्ला गण्डकी एफएम .com जिमी पात्र र नेपाली पात्र एफसी हिमालिन जीवुण्डा विश्व डाङ्गलाङ यिनफेन रेडियो अधिकारी फेसबुक पेज शुक्ला गण्डक एफएम गुनेगु थप्ला खुब मेगा हज र शुक्ला गण्डक च्याट युट्युब च्यानल राङ न छिपुसी मालु बिलाई ठोज्याज यिनफेन ठोज्याज प्रायोजक असीम अस्मी फेन्सी स्टोर शुक्ला गण्डक पेउ ख भ्या संस्कृति संरक्षण र प्रबन्धन एउटा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद शुक्ला गण्डक नपाङ सहकार यहाँली ठोज्याज डकाउ ख ठोस्या छगो हप्ता नपाई ज्याजय छिपुङ सक्का सिंह हरिदेव न्यायपूजा सिंहको सय निपीको साधारण सभा र हिङेको अधिवेशन सम्बन्धी खाँ र निवा भ्याए डकाटु म्याए रचयिता जिमी अरिदेव न्यायपूजा सेवक से नपाए नाय ए डकाटु म्या न्याडिल ठङ आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद ए आयोजना ए जेठ पेउ गते नसिंह छगो हप्तातले सञ्चालन ज्यौ रेडियो भाषा कक्षा तालिम ए उद्घाटन सम्बन्धी खाँ टेटा जिगाचाङ न्याडिस श्रोतावृन्द आदिवासी जनजाति महासंघ नगर शुक्ला गण्डकीद्वारा संचालित रेडियो भाषा कक्षाको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु सबैले सुनेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु रेडियो भाषा शिक्षा उद्घाटन उलेजा ज्याज आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी ए नाय कुल कुमार कुमार ए नायकत्व ए जिउख छान्जे बिर्सना श्रेष्ठसँग ठो ज्याज सञ्चालन ज्याज न्याकेगु याउख मु पाँच शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पाए मुख्य प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल डौख आनाङ पानसिंह मटा च्याकाली ज्याज उलेज्या याडिल ठोज्या जय अरिदेव न्यायपोचा सेवाकोष दुलेगौडा ए निर्वाचित ज्यू पुङ नाय लगायत सकनी दुजपुन्टा ठोज्या जय नाय कुलकुमार कुमालङ सिन टिकाली र मुपाङ खाता गोकाली लसकुसे आदिल ठोज्याज ए आदिवासी जनजाति शुक्ला गण्डकी ए नकु सुरेन्द्र तामाङ लसकुसे आदिल ठो आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डकी प्रदेश ए छान्जे विमल जी सिंह भुजिल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ला गण्डकी ए नपा नाय तुलसी कुमार श्रेष्ठ निवा देवबु शुक्ला गण्डकी ए नाय अर्जुन कुमार श्रेष्ठ अरिदेव न्यायपचा सेको से नाय बेलबहादुर श्रेष्ठ भिन्तना नचु यहाँ भेडिल आदिवासी जनजाति शुक्ला गण्डकी सल्लाहकार संयोजक खिङ कुमार ङ ठो रेडियो ज्या कक्षा भ्या कक्षा बारे सकटाङ खाँ ट्याडिल र जेठ नौ गते निसिङ सुरु ज्याली नेउ गते तले ज्याज न्याकेको खाँ ट्याडिल ठो ज्याज नेपाल भ्याए ज्याज प्रस्तुत अरिदेव न्यायपचा सेको से नपाए नाय ज्ञान नारायण श्रेष्ठ ङ नेपाल भ्याए हसुङ डाछी तले रेडियो साउ ज्याए अनुभव र ज्या ज्या साउ बेटी ए दुःख व्यक्त म्याडिल म भ्याए ज्याज नकिमा सविता थापाङ म भ्याए थसुन साउ ज्याए ज्याज साउ बेटी ए समस्या ट्याडिल र सा भ्याए ज्याज नगीमा प्रतिमा गुरूङ सा भ्याए ठाउ खाँटारिल अठिन्टुङ कुमा भ्याए ज्याज नगीमा मार्टिन कुमाल कुमा भ्याए बाल्लाका ठाउ खाँटारिल नुवापुङ सकसी ठौ भ्या कला संस्कृति मक्कासा ठौ पहिचान मैना छेछि सकसिंह भ्या लामा ढ्या ढ्या खा ढ्याल ढासा आदिवासी जनजाति शुक्ला गण्डकीय सल्लाहकार संयोजक खिम कुमालङ ठो भ्या मकेटा अब स्कूले पाठ्यक्रममा डकाली स्कूले सुम बोङ्यौ नीति डकेटा आदिवासी जनजाति शुक्ला गण्डकीय ज्याचुङ ढ्याउ खान ढारिल आदिवासी जनजाति शुक्लाकाण्ड या नायक कुलकुमार कुमालङ ठो ज्याजय ज्याचुङ बोनी कामी पुङ सकस्ट्या सुभाय नचु बिबिङ आदिवासी जनजाति शुक्लाकाण्ड या ज्याजय ढेवा भैचाड ज्या सान्डा ठाकुर जिसाना ठाउँ संस्कृति मकेटा सकनी जुटिलेमा ज्याज कोचाया डिल आतले जीवसुङ आदिवासी जनजाति नगर समन्वय परिषद शुक्लाकाण्ड कि न ठोइ जेठ पेनु वाउ खुनु उद्घाटन उलेजा सम्बन्धी खा यहाँडिल मेको हप्ता आदिवासी जनजाति शुक्लाकाण्डकी रेडियो भाषा कक्षाई नेनु तले साङ ज्यार ठोए उपलब्धि सम्बन्धी खा क्याली वेगा यहाँ भाडा लटा जागा जेन्नु ठौ भ्या मकेमा सुभाया

नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज मिति विक्रम सम्म 2083 साल जेठ महिनाको 9 गते शनिबार अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। अंग्रेजी मिति अनुसार मे 23 तारीक सन् 2026 नेपाल सम्म 1146। आज युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ जन्म जयन्ती। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। बिहानी शुक्ल गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। समाचार कक्षबाट मरिमा शुक्ला गण्डकी समाचार शुरू गरौं। प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट